इनम् अग्निर्नो वंसता ओहो वा रायिम् एहवत्वामदेव्यं तृतीयम् अग्निस्तिग्मेन शोचिषा इहा यं सद्विश्वन्यत्रेनामिहा।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

अनर्थशासनाय नमः, अधर्मशत्रवे नमः, अक्षय्याय नमः, पुरोहूताय नमः, पुरुष्टुताय नमः, बृहद्भुजाय नमः, ब्रह्मगर्भाय नमः, धर्मधेनवे नमः,

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

अस्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् विमलपटी कमलकुटी पुस्तक रुद्राक्षशस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षी कलित विपंची विभासि वैरिंची वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।

0: नारायण नारायण नारायण नारायण। हम सब स्वामी जी के श्री चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हैं। स्वामी जी की प्रेमपुरी आश्रम पर बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी जी का गंभीर शांत व्यक्तित्व अपने आप में एक प्रेरणा देता है शांति की, परमानंद की। स्वामी जी का पहले कार्यक्रम 30 जून तक का था, लेकिन अब स्वामी जी 28 जून की रात्रि को अमेरिका पधारेंगे, तो स्वामी जी का कार्यक्रम 28 जून तक रहेगा। इस सत्र में स्वामी जी दक्षिणामूर्ति सूत्र प्रवचन करेंगे, जिसमें 10 श्लोक हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 10 श्लोक इस सत्र में पूरे हो जाएंगे और स्वामी जी के मार्गदर्शन में हमें पूरा ज्ञान और आनंद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में वंदना करता हूँ।
1: ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्यग्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे।

0: ओ भूत भावन पतित पावन आशुतोष सर्वज्ञ भगवान शिव की अनुकंपा कृपा, इस साल फिर आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और इसी तरह आपके बीच में बैठकर अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये अवसर कब तक प्राप्त होगा ये अज्ञात है, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। फिर भी जब तक प्राप्त हो रहा है उसका लाभ हम इसी तरह लेते रहेंगे। तो वर्षों से प्रेम प्रिय आश्रम में आते हैं और अपने विचार शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन की अनुभूति को और शास्त्र के प्रमाण को आपके सामने रखते हैं। कई वर्ष तक श्वेताश्वत उपनिषद की श्रृंखला चली और गत वर्ष वह श्रृंखला पूर्ण हुई है श्वेताश्वत। तो इस बार सर्वज्ञ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवाद्वैतवाद को प्रतिपादन करने वाले स्तोत्र, जिसको दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कहते हैं, उसको आधार बनाकर विचार करने की इच्छा हुई है। भगवान शिव की प्रेरणा, सर्वज्ञ गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा हुई है कि इस पर कुछ विचार करें। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भगवान शंकराचार्य जी के अनेक स्तोत्र में से एक स्तोत्र है। भगवान शंकराचार्य जी की विलक्षण प्रतिभा और वैदिक सनातन धर्म को एक अपूर्व देन है, उनका योगदान है। और जिन्होंने अपनी साधना और चिंतन और अभ्यास के द्वारा समाज को बहुत रत्न दिया है और भारतीय दर्शन को इस तरह परिपुष्ट किया है, इस तरह पोषण किया है कि सामान्यतया ये दर्शन किसी के सामने कमजोर सिद्ध नहीं होता है। ये भारतीय दर्शन विशेष करके अद्वैत दर्शन अपने आप में एक अद्भुत दर्शन है और उस दर्शन को मजबूत और परिपुष्ट करने में सर्वज्ञ आदि गुरु शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अद्वैत दर्शन का प्रवर्तक शंकराचार्य जी नहीं है, अद्वैत तो वह अनादि सिद्ध है, उपनिषद सिद्धांत है, उनके पूर्वाचार्यों का सिद्धांत है। उस दर्शन का केवल शंकराचार्य जी ने पोषण किया है। उसको पुष्ट किया है। तो शंकराचार्य जी ने सबसे पहले अनेक उपनिषदों पर भाष्य लिखी, उससे पहले उपनिषद के ये मंत्र इतनी रहस्यमय थे कि साधारण व्यक्तियों को उपनिषद के मंत्रार्थ बोध होना बहुत मुश्किल होता था। उपनिषदों पर सबसे पहले भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखी, उसके बाद तो अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी भावना और अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग भाष्य लिखी, लेकिन पहले भाष्य रचना भाष्य लिखने वाले सर्वज्ञ आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं। भाष्य ग्रंथ के अलावा अनेक प्रकरण ग्रंथ की रचना की स्वतंत्र, जिसके अंतर्गत उपदेश सहस्त्री है, जिसके अंतर्गत विवेक चूड़ामणि है, जिनके अंतर्गत सिद्धांत बिंदु आदि अनेक प्रकरण ग्रंथ हैं, प्रकरण द्वादशी प्रकरणाष्टक के नाम से प्रसिद्ध है, अपरोक्षानुभूति, दृग्दृश्य विवेक, प्रणव की व्याख्या में पंचीकरण, ये सब स्वतंत्र रूप में शंकराचार्य जी की रचना है। उसके अलावा स्वतंत्र रूप में स्तुति ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथों की रचना की है। कुछ लोग शंकराचार्य जी की प्रतिभा से असंतुष्ट हुए लोग ये आक्षेप लगाते हैं शंकराचार्य जी पर कि शंकराचार्य जी शुष्क अद्वैतवादी हैं। लेकिन शंकराचार्य जी को जो न समझने वाले हैं वही ऐसा आक्षेप लगाते हैं। सर्वज्ञ आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी शुष्क अद्वैतवादी नहीं है। वास्तव में शुष्क अद्वैतवाद ही तो अष्टावक्र है, महर्षि अष्टावक्र है। अशुष्क अद्वैतवादी तो गौड़पादाचार्य जी हो सकते हैं, क्योंकि इन आचार्यों के कहीं भी भक्ति प्रकरण या भक्ति स्तोत्र आदि या भक्ति प्रसंग उपलब्ध नहीं होता है। उपासना से जुड़े हुए कई ग्रंथ, कोई प्रसंग समाज में उपलब्ध नहीं है। लेकिन खुद शंकराचार्य जी के अनेक ग्रंथ ऐसे हैं कि जो भक्ति से ओतप्रोत हैं, और वह भी कोई पूर्वाग्रही भक्ति नहीं है कि शिव भक्ति है तो केवल शिव भक्ति और किसी की नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय इतिहास में इस तरह समन्वयवादी आचार्यों का शंकराचार्य जी के अलावा और किसी भी आचार्यों में इस तरह का समन्वय देखने में नहीं आता है। और आचार्य केवल पूर्वाग्रही होकर समाज का नेतृत्व करते रहे। विष्णु भक्ति है तो केवल अंधा विष्णु भक्ति है, उन्होंने और किसी की चर्चा नहीं की। कृष्ण भक्ति है तो एक तरफ पूर्वाग्रह पूर्वक केवल कृष्ण भक्ति की चर्चा की, उसके अलावा और किसी की नहीं की। लेकिन सर्वज्ञ आदि गुरु शंकराचार्य जी की विशेषता है, वह जितनी निष्ठा अद्वैत वेदांत में है उतनी ही निष्ठा उपासना में भी रखते हैं, और साथ ही उपासना में जितनी निष्ठा शिव में रखते हैं उतनी निष्ठा शक्ति में भी रखते हैं, देवी में भी रखते हैं। तो इसीलिए शिव उपासना के लिए उन्होंने भक्ति के लिए स्वतंत्र रूप में शिवानंद लहरी नामक एक स्वतंत्र स्तुति ग्रंथ की रचना की। और जिसने शिवानंद लहरी की रचना की वही शक्ति की उपासना, देवी की उपासना के लिए सौंदर्य लहरी की रचना की। और उस सौंदर्य लहरी जब पढ़ते हैं तो सब कुछ परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही भगवती जगज्जननी पराम्बा शक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। उस समय ये नहीं सोचते हैं कि शिव का क्या होगा। और जब शिव की स्तुति करते हैं तो उस समय फिर शिव को ही परब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इस तरह शिव और शक्ति के रूप में दोनों की उपासना शंकराचार्य जी ने की। तो वैष्णव लोग ये कह सकते हैं कि शिव और शक्ति दोनों तो मिले हुए हैं, पति पत्नी हैं। तो शंकराचार्य जी ने शिव शक्ति की उपासना का प्रतिपादन किया, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने उसी तरह उसी निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की स्तुति की है। तब शंकराचार्य जी में आक्षेप करने का कोई अवसर ही नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। षटपदी आप पढ़िए, आज भी वैष्णवों में आदर्श स्तोत्र बना हुआ है षटपदी, शंकराचार्य जी की रचना है। इसी तरह अनेक स्तोत्र हैं कृष्ण भक्ति के लिए, भगवान शंकराचार्य जी का कृष्णाष्टक इतना प्रसिद्ध है, तो उपासना से संबंधित अनेक स्तोत्र ग्रंथ की रचना की है। उसी क्रम में भगवान शंकराचार्य जी ने ज्ञानमूर्ति, जो गुरुमूर्ति हैं भगवान शिव, उनकी भक्ति से संबंधित यानी गुरु भक्ति से संबंधित, हालांकि स्वयं शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य जी हैं, वो दीक्षा गुरु हैं, जिनसे शंकराचार्य जी ने सन्यास दीक्षा ग्रहण की। लेकिन साक्षात गुरु तो भगवान शिव ही है, क्योंकि शिव को सपूर्वेशामपि गुरु हो कालेन अनवच्छेदात्, वह सभी पूर्वाचार्य जितने भी हैं उन सभी के भी वह परमाचार्य हैं। अब ये बात कुछ लोग नहीं मानते, जबकि ये स्वयं प्रमाण है, भागवत आदि व्यास के रचित पुराण आदि इसमें प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है इनमें, और वैष्णवादी जिनको आचार्य मानते हैं उनके भी परमाचार्य भगवान शिव हैं, तो वो पूर्वाग्रही हैं, इसीलिए वहां तक पहुंचना नहीं चाहते हैं। सनत कुमार को पूर्वाचार्य के रूप में मानते हैं, लेकिन सनत कुमार के गुरु कौन है, ये तो उपनिषद और पुराण सब प्रमाण है, उन सनत कुमारों के भी आचार्य भगवान शिव है। सनत कुमारों के आचार्य, उनको जो ज्ञान दिया वो पूर्वाचार्य भगवान शिव, उनको दक्षिणामूर्ति कहते हैं, और उन पूर्वाचार्य जो दक्षिणामूर्ति भगवान शिव हैं, उन शिव से संबंधित स्तोत्र दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। भगवान शंकराचार्य जी ने भगवान शिव को गुरुमूर्ति के रूप में जो माना है, तो वह ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, दस श्लोकों का ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, और इसमें इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में उन वेदांत के तमाम रहस्यों को समाहित करके, उन सूत्रों को इसमें समाहित करके, और भगवान शिव को गुरु को केवल नमस्कार द्वारा भक्ति की है। नमस्कारात्मक भक्ति, यहां भगवान दक्षिणामूर्ति को केवल नमस्कार किया है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये इदं नमः। क्योंकि जो ज्ञान देने वाला गुरु है उसको इस नमस्कार के अलावा और कोई भी और किसी भी वस्तु के द्वारा, अन्य किसी भी क्रिया के द्वारा उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। प्रसंग आएगा तो उसमें विचार करेंगे नमः शब्द का क्या अर्थ है, हमें याद आ गया, स्मृति में वो प्रसंग याद आ गया, बहुत वर्ष पहले इसी प्रेमपुरी आश्रम में हमारे गिरीश भाई के युवाओं का एक दिव्य पथ था, क्या था प्रसंग, उसमें मुझे बोलने का अवसर था, तो क्या बोले, ओम नमः शिवाय में हमने 3 दिन प्रवचन किया था, ये पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय, उसमें इसके नमः के बारे में बहुत विस्तार से व्याख्या की थी। हरि भाई ड्रेस वाले भी थे उस समय, बहुत प्रसन्न हुए थे 3 दिन तक इस प्रसंग को सुनकर। नमः इस शब्द पर ये वो प्रसंग स्मरण में आ गया। तो नमः का अर्थ होता है, जैसे आप कहते हो सर्वस्वात्म निवेदनम, तो बलि की जो भक्ति है वो आत्मसमर्पण है, और ज्ञान देने वाले गुरु को किसी वस्तु देकर उऋण नहीं हुआ जा सकता है। तब उस ज्ञान के द्वारा उपकृत जो हुए हैं उसका उऋण होने का एक ही प्रसंग है कि उसको नमस्कार करो, नमः। तो नमः एक शारीरिक क्रिया, आजकल तो नमः शब्द का, नमस्कार का अर्थ केवल एक शारीरिक क्रिया तक ही सीमित रह गया है, उसमें भावना को जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। कई बार जिससे हम बोलने भी नहीं चाहते, जिसको हम देखना नहीं चाहते, वो भी यदि अचानक सामने आ गया, सबके बीच में आ गया, तो सभी लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं, तो अपने भी नमस्कार करना पड़ता है। यदि नहीं किए तो फिर और लोग बात करने लग जाएंगे, ये उसको तो नमस्कार है, हाथ भी नहीं जोड़ा इसने, भाई क्या बात है, उसके साथ झगड़ा है क्या, फिर और दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अंदर से भावना उसको नमस्कार करने की नहीं है, फिर भी बाहर से क्रियात्मक नमस्कार करना पड़ता है लोक उसके लिए, लोकोपचार के लिए, औपचारिक रूप में। लेकिन ये नमस्कार केवल क्रियात्मक नहीं है, नमस्कार वास्तव में भावनात्मक है। नमः शब्द का अर्थ ही होता है जिस अहम को तुम धारण कर रखे हो और जिस अहम के चलते तुम्हें कष्ट हो रही है, उस अहम का उत्सर्जन करना है। तो गुरु के सामने क्या अभिनिवेश रखना है, क्या अहंकार रखना है, जिसने जीव से शिव बना दिया है उसके सामने क्या घमंड करना है भाई। जो साक्षात जीव को शिव बनाने जा रहा है उसके सामने क्या अवशेष रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। तो नमः आत्म निवेदन है, ये प्रभु भाव है, समर्पण भाव है, उत्सर्जन है, समस्त माया और तत्कार्यों का उत्सर्जन है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने इस दक्षिणामूर्ति के स्तोत्रों के माध्यम से ज्ञान देने वाले वह परम गुरु जिसको यह दक्षिणा मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है, उन गुरु के प्रति जो आत्मनिवेदन है, भावनात्मक नमस्कार है, उसको इन स्तोत्र के माध्यम से प्रतिपादन करते हैं कि कैसा है वो आपका जो नमनीय है, आपका जो ज्ञानदाता गुरु है, वो वास्तव में कैसे हैं। तत्त्वतः उस तत्व का प्रतिपादन करके फिर ऐसे जो गुरु हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं।
1: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunilakanta Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारतीय संत या शिव भक्त नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम तिरुनीलकंठ है। प्राचीन काल में तिल्लई यानी कि चिदंबरम में एक कुम्हार परिवार रहता था। नटराज शिव की कृपा से उस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। विष को कंठ में धारण करने वाले शिव के तिरुनीलकंठ नाम को रटते रहने के कारण उस कुम्हार बालक का असली नाम लोग भूल गए और उनका नाम तिरुनीलकंठ से ही प्रसिद्ध हो गया। उनकी मान्यता यह थी कि शिव ने अपने कंठ में विष धारण करके मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि वे उनकी विघ्न बाधाओं को सदा दूर करेंगे। उनकी युवती पत्नी धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण और लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार तिरुनीलकंठ नगर में एक रात्रि व्यतीत करके प्रातः घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनके बाहर रहने का कारण जानना चाहा। यह ज्ञात होने पर कि पति एक वैश्या के साथ रात व्यतीत करके आए हैं, उनके विश्वास को ठेस लगी। उसने उसी क्षण कहा, फिर नीलकंठ की शपथ, आप अब हमें स्पर्श नहीं करना। अपनी भूल और दुर्बलता पर पश्चाताप करते हुए फिर नीलकंठ ने कहा, तुमने हमें शब्द का प्रयोग किया है, मैं आज से किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा। पवित्रता की प्रतिमूर्ति पत्नी गृहस्थ के सभी दायित्वों को निर्वाह करती रही। यद्यपि उस दिन से उनका शारीरिक संबंध समाप्त हो गया, परंतु किसी के कानों में यह खबर न हुई। इस घटना के अनेकानेक वर्ष बाद एक बार एक शिव भक्त अपना भिक्षा पात्र तिरुनीलकंठ के पास धरोहर के रूप में छोड़ गए। जब वे शिव योगी विविध तीर्थ स्थलों की यात्रा करके अपना भिक्षा पात्र लेने आए तो तिरुनीलकंठ उस पात्र को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। बदले में नवीन भिक्षा पात्र देने के आग्रह को अस्वीकार करने पर योगी ने तिरुनीलकंठ से यह कहा कि तुम चोर हो। उन पर चोरी का लांछन लगाया। मामला न्यायालय तक पहुंच गया। तिल्लई चिदंबरम निवासी ब्राह्मणों के न्यायालय में वृद्ध योगी ने कुशलतापूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायमंडल के धर्मस्थ सदस्यों ने तिरुनीलकंठ को बुलाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा। वादी के आरोपों को स्वीकार करते हुए तिरुनीलकंठ ने प्रतिवाद किया कि वे चोर नहीं है, परंतु भिक्षा पात्र कहीं खो गया है। न्यायाधीश ने निर्णय दिया, इन्होंने जो पात्र आपके पास थाती के रूप में रखा था वह आपसे गायब हो गया है। ऐसी स्थिति में यही उचित लगता है कि इन शिवयोगी की इच्छा के अनुसार आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस तालाब में डुबकी लगाए और शपथ पूर्वक कहें कि आपने चोरी नहीं की है। वृद्ध तिरुनीलकंठ पत्नी के साथ साथ तालाब में उतरे। जल में डुबकी लगाने से पूर्व उन्होंने सारी सभा को पत्नी का हाथ न पकड़ने का मूल कारण रूप अपनी वैश्य गमन की घटना और पत्नी के शपथ वाक्य का प्रसंग सुनाकर स्पष्टीकरण किया। फिर एक बांस की छड़ी को पकड़े हुए वृद्ध दंपति ने जल में डुबकी लगाई। जल से बाहर निकले तब तक दोनों का कायाकल्प हो गया था। दोनों नवीन यौवन की दीप्ति के से दमक रहे थे। यह उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने ढूंढा तो वह वृद्ध शिवयोगी कहीं नजर नहीं आए। तभी उनको ज्ञात हुआ कि वे शिवयोगी नहीं बल्कि परंतु भगवान शिव स्वयं थे। तिरुनीलकंठ के समय में पुरुषों के वैश्याग्रह जाना एक साधारण सी घटना थी, पर तिरुनीलकंठ की पत्नी ने इसे अपने प्रेम और सेवा की अवहेलना समझा। तिरुनीलकंठ की शपथ लेकर कहा गया वाक्य वास्तव में पति के वैश्यगमन से हुए मानसिक आघात का द्योतक था। पत्नी की मर्यादा मानो खंडित हो गई हो। शिव द्वारा की गई इस लीला के मूल में तिरुनीलकंठ के पश्चाताप, त्याग भावना और पत्नी के प्रति किए गए अन्याय के लिए शारीरिक मानसिक दंड की स्वीकृति थी। अपने पश्चाताप द्वारा उन्होंने जो साधना की उसे समाज में उजागर कर यह कथा भक्त के आध्यात्मिक पुनर्जन्म को वर्णन करती है, इसीलिए उनका नाम नायनमार में गिना गया है। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय।
5: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
4: ओम नमः शिवाय।

ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दहिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विशेष संत प्रवचन माला कार्यक्रम का आज से आरंभ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। कभी प्रेमपुरी आश्रम आयोजित संत प्रवचन माला के अंतर्गत, कभी प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत। इस वर्ष गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी की रचना भगवान शिव के प्रति अपनी भावनात्मक भक्ति से ओतप्रोत यह शिवानंद लहरी, जैसे कि इसका नाम है शिवानंद लहर। आजकल चौमासा में समुद्र में लहर चल रहे हैं, तरंग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। विशेष करके आजकल के जो आधुनिक युवा युवती उस लहर का बड़ा आनंद ले रहे हैं। हम जैसे बूढ़े तो घबरा जाते हैं, पानी के छींटे से भी हमको खांसी जुकाम अनेक रोग आदि व्याधि आ जाते हैं, इसलिए हम बचना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं युवा युवती को आनंद लेते हैं उसका। हम वृद्धों के लिए प्रेमपुरी आश्रम में ये शिवानंद लहर है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सौ सौ श्लोकों का ये लहर, ये तरंग, इसका हम मुमुक्षु भगवान के भक्त भरपूर आनंद ले सकते हैं। और इसी उद्देश्य से इसका आरंभ किया गया है। भक्ति में भाव प्रदान होता है, भक्ति में तर्क और बुद्धि का बहुत कम योग उपयोग होता है, भक्ति में भावना से संबंध है, भाव प्रदान है। इसलिए किसी संत ने कहा प्रार्थना भले ही शब्द शून्य हो लेकिन भाव शून्य नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना में शब्दों का महत्व बहुत कम है, लेकिन कई बार हम शब्दों का प्रयोग करते हुए भाव से रहित हो जाते हैं, केवल शब्दों के चक्कर में पड़ते रहते हैं।

0: फलस्य करणम् मच्छेष्टितम् निश्चितम् तस्मान् मामकरक्षणम् पशुपति कर्तव्यमेव त्वया। परमात्मा अलौकिक पुरुष है, इसके बावजूद भी शंकराचार्य जी जब उनकी स्तुति करते हैं तो मानो कि वो एक लौकिक पुरुष है। लोक व्यवहार में व्यक्ति आनंद के लिए बहुत कुछ करता है, हालांकि तमाम श्रुतियों ने परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा है। भगवान शिव स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद जिसका स्वरूप हो उसे आनंदित होने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, समझ गए। मिश्री स्वयं मधुर स्वरूप है, मीठा है, मधुर है, मिश्री को मीठा होने के लिए किसी अन्य का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जलेबी स्वयं मधुर स्वरूप नहीं है उसके, पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने इसका संकेत किया। जलेबी जब बनाया जाता है मैदे को भिजाते हैं, एक दो दिन पहले उसको खमीर बनाते हैं, फिर उसको तेल में पकाते हैं, लेकिन मधुर नहीं होता है, मीठा नहीं होता है। तेल में पका हुआ जलेबी मीठा नहीं होता है, और जलेबी को मीठा करने के लिए मिश्री का यानी चीनी का आश्रय लेना पड़ता है। बेसन का जब पकौड़ा आप पकाते हो तो वह नमकीन नहीं होता है, वो पकौड़े को नमकीन होने के लिए नमक का आश्रय लेना पड़ता है। जलेबी को मधुर होने के लिए चीनी का आश्रय लेना पड़ता है, लेकिन नमक को नमकीन होने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ेगा? किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, खुद नमकीन है। चीनी को मधुर होने के लिए किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, चीनी खुद। तुम हम लौकिक पुरुषों को आनंदित होने के लिए अन्य का आश्रय लेना जरूरी है, क्योंकि हम लौकिक पुरुष में वह आनंद स्वरूपता अनुभव में नहीं आ रहा है। हालांकि वेदांत की प्रक्रिया से वह हमारा स्वरूप है, अपना ही स्वरूप होते हुए भी प्रातःकालीन प्रवचन पंचदशी के प्रवचन में आप लोगों ने सुना, प्रतिबंधक के चलते उसका अनुभव नहीं हो पाता। जब तक वो प्रतिबंधक नहीं हटेगा तब तक उसका अनुभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें अन्य का आश्रय लेना पड़ता है। तो हजार विकल्प हम लोगों ने खोज ली है, लौकिक पुरुष आनंदित होने के लिए अन्य का आश्रय लेते हैं और उसके लिए अन्य के रूप में हजार विकल्प खोजी। भगवान शिव को कोई विकल्प खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन मानो कि वो हमसे मिल रहे हैं, वो अलौकिक पुरुष होते हुए भी मानो कि वो हमारी तरह लौकिक पुरुष की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं। तो जिस तरह लौकिक पुरुष आनंदित होने के लिए क्रीड़ा करता है, खेल खेलता है, और जो खेल खेलता है वह साधन सापेक्ष है, बिना साधन का तो खेल नहीं पाएगा। तो उन अनेक प्रकार के साधनों का निर्माण करता है, उसका निर्माता भी वही है, प्रयोगकर्ता भी वही है, और उसका उपभोक्ता भी वही है। शंकराचार्य जी उनको कह रहे, भगवान शिव को कह रहे, हे शिव, शंभो या संबोधन है, दो संबोधन यहां शिव जी के लिए शंकराचार्य जी ने प्रयोग किया है। पहला संबोधन है शंभो और दूसरा संबोधन है पशुपति। पशुपति संबोधन में पशुपति, शंभु संबोधन में शंभो। क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचम अखिलम, अखिलम प्रपंचम, पांच का खेल, पांच वस्तु को उपादान कारण के रूप में लेकर और उसी के पंचीकरण अपंचीकरण आदि के द्वारा समस्त स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों की रचना की। अपंचीकृत पंचों से सूक्ष्म जगत की और पंचीकृत पंचों से स्थूल जगत की रचना परमात्मा ने की है, इसीलिए इस जगत का, स्थूल और सूक्ष्म उभय जगत का नाम है प्रपंच। श्री जैसी अखिलम प्रपंचम श्री जैसी, आपने इसकी रचना की है, आपने इसकी सृष्टि की है, इस प्रपंच को आपने ही बनाया है। किस लिए बनाया है? बनाने का प्रयोजन क्रीडार्थम, मैं इस संसार में खेलूं क्रीडार्थम, इसलिए हमने भूमिका में कहा था स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी साधन सापेक्ष क्रीड़ा करके आनंदित हूं, ऐसी इच्छा परमात्मा की हुई, इसकी शिवजी की हुई, माया वृत्ति से ये इच्छा हुई। परमात्मा को ये जो इच्छा हुई है, मैं संसार में क्रीड़ा करूं, खेल खेलूं और खेलकर आनंदित हूं, इस इच्छा के चलते प्रपंचम अखिलम सृजसी, अपने ही सृष्टि की है, खुद अपने ही इस प्रपंच को बनाया है। क्यों बनाया? खेलने के लिए बनाया। तो फिर क्रीड़ा मृगास्ते जनाहा, संसार में आपके बायक और जो भी है, आपके अलावा जो है, सब क्या है? क्रीड़ा मृग है। क्रीड़ा मृग अर्थात खेल के खिलौने, खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं ना उनको क्रीड़ा मृग बोलते हैं। वास्तव में बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, बच्चे सभी के अच्छे होते हैं। इंसान को भी गधा भले ही अच्छा न लगे, गधे का बच्चा बहुत आनंद देता है, उसकी चाल ढाल ही बड़ी निराली होती है, बड़ा आकर्षण होता है, मतलब भोला भाला पना देखता है। कुत्ता भले ही पर अच्छा न लगे, कुत्ते के बच्चे बड़े आनंददायक होते हैं। किसी की भी, चाहे बकरे के देख लो, चाहे गाय के बछड़े देख लो, बिल्ली को देखकर व्यक्ति इतना आकर्षित नहीं होता है, बिल्ली के बच्चों को देखकर आकर्षित होते हैं। इसलिए जब मृग देखते हैं या मृग के शावक देखते हैं, मन में एक अलग प्रकार की स्फूर्णा अलग भाव प्रकट होता है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम। जनाः क्रीड़ा मृगाः, ते क्रीड़ा मृगा। संसार में जितने भी जीव हैं वो सब आपके क्रीड़ा मृग हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, ध्यान देना, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, चाहे सरीसृप हो चाहे पक्षी हो चाहे कीट पतंग हो, ये सब आपके खिलौने हैं, इन सब से आप क्रीड़ा करते हो, खेलते हो, खेलने के प्रयोजन से आपने इनका निर्माण किया है, बनाया है, इनकी रचना की है। तो शंकराचार्य जी आके क्या कहते हैं,
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: ஓம் சிவாய நமஹ. Shaivam.org இன் அன்பான நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனைகள் பாடல். சுத்தானந்த பாரதி இயற்றிய எப்படி பாடினரோ ராகம், கர்நாடக தேவகந்தரி. பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

स्वस्तिदाय नमः सुधाम्ने नमः धात्रीधाम्ने नमः धामकराय नमः सवर्गाय नमः

सुषेणाय नमः, सुरशत्रुघ्ने नमः, अमेयाय नमः, अरिष्टमथनाय नमः, मुकुन्दाय नमः, विगतज्वराय नमः, स्वयं ज्योतिषे नमः, अणुज्योतिषे नमः, अचलाय नमः, परमेश्वराय नमः, पिंगलाय नमः, कपिलश्मश्रवे नमः, शास्त्रनेत्राय नमः, त्रयीतनवे नमः, भगाय नमः, विवस्वते नमः, आदित्याय नमः, योगाचाराय नमः, दिवस्पतये नमः, उदारकीर्तये नमः, उद्योगिने नमः, सद्योगिने नमः, सदसन्मयाय नमः, नक्षत्रमालिने नमः, नाकेशाय नमः, स्वाधिष्ठानषडाश्रयाय नमः, पवित्रपादाय नमः, पापारये नमः, मणिपूराय नमः, नभोगतये नमः, हृत्पुण्डरीकाय नमः, आसीनाय नमः, शुक्राशनाय नमः, वृषाकपये नमः, तुष्टाय नमः, गृहपतये नमः, कृष्णाय नमः, समर्थाय नमः, अनर्थशासनाय नमः, अधर्मशत्रवे नमः, अक्षय्याय नमः, पुरुहूताय नमः, पुरुष्टुताय नमः, बृहद्भुजाय नमः, ब्रह्मगर्भाय नमः, धर्मधेनवे नमः।

नमः मखद्वेषिने नमः विष्णुकन्धरपातनाय नमः वीतदोषाय नमः अक्षयगुणाय नमः अन्तकारये नमः पूषदन्तभिदे नमः धुर्झटये नमः खण्डपरशवे नमः सकलाय नमः।

वासुकये नमः, महेश्वासाय नमः, महीभर्त्रे नमः, निष्कलङ्काय नमः, विशृङ्खलाय नमः, द्युमणये नमः, तरणये नमः, धन्याय नमः, सिद्धिदाय नमः, सिद्धिसाधनाय नमः, विवृताय नमः, समृताय नमः, शिल्पिने नमः, ब्यूडरोस्काय नमः, महाबुजाय नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

द्विषतो वधाय धर्त्रमासिदिवन्दृज्ञः ब्रह्मवनित्वाक्षत्रवने सजातवन्युपादधामि द्विषतो वधाय विश्वाभ्यस्त्वाशा अभ्य उपादधामि द्विषतो वधाय चितस्थोर्ध्वजितो भृगु ऊनामङ्गीरसान्तपासातप्यध्वम् शर्मास्य वाधूतज्ञ रक्षो वाधूता अरातयः आदित्यास्त्व

0: नारायण नारायण नारायण नारायण। हम सब स्वामी जी के श्री चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हैं। स्वामी जी की प्रेमपुरी आश्रम पर बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी जी का गंभीर शांत व्यक्तित्व अपने आप में एक प्रेरणा देता है शांति की, परमानंद की। स्वामी जी का पहले कार्यक्रम 30 जून तक का था, लेकिन अब स्वामी जी 28 जून की रात्रि को अमेरिका पधारेंगे, तो स्वामी जी का कार्यक्रम 28 जून तक रहेगा। इस सत्र में स्वामी जी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र प्रवचन करेंगे, जिसमें 10 श्लोक हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 10 श्लोक इस सत्र में पूरे हो जाएंगे और स्वामी जी के मार्गदर्शन में हमें पूरा ज्ञान और आनंद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में वंदना करता हूँ।
1: ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्यग्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांति।

0: ओ भूत भावन पतित पावन आशुतोष सर्वज्ञ भगवान शिव की अनुकंपा कृपा, इस साल फिर आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और इसी तरह आपके बीच में बैठकर अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये अवसर कब तक प्राप्त होगा ये अज्ञात है, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। फिर भी जब तक प्राप्त हो रहा है उसका लाभ हम इसी तरह लेते रहेंगे। तो वर्षों से प्रेम प्रिय आश्रम में आते हैं और अपने विचार शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन की अनुभूति को और शास्त्र के प्रमाण को आपके सामने रखते हैं। कई वर्ष तक श्वेताश्वत उपनिषद की श्रृंखला चली और गत वर्ष वह श्रृंखला पूर्ण हुई है श्वेताश्वत। तो इस बार सर्वज्ञ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवाद्वैतवाद को प्रतिपादन करने वाले स्तोत्र, जिसको दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कहते हैं, उसको आधार बनाकर विचार करने की इच्छा हुई है। भगवान शिव की प्रेरणा, सर्वज्ञ गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा हुई है कि इस पर कुछ विचार करें। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भगवान शंकराचार्य जी के अनेक स्तोत्र में से एक स्तोत्र है। भगवान शंकराचार्य जी की विलक्षण प्रतिभा और वैदिक सनातन धर्म को एक अपूर्व देन है, उनका योगदान है। और जिन्होंने अपनी साधना और चिंतन और अभ्यास के द्वारा समाज को बहुत रत्न दिया है और भारतीय दर्शन को इस तरह परिपुष्ट किया है, इस तरह पोषण किया है कि सामान्यतया ये दर्शन किसी के सामने कमजोर सिद्ध नहीं होता है। ये भारतीय दर्शन विशेष करके अद्वैत दर्शन अपने आप में एक अद्भुत दर्शन है और उस दर्शन को मजबूत और परिपुष्ट करने में सर्वज्ञ आदि गुरु शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अद्वैत दर्शन का प्रवर्तक शंकराचार्य जी नहीं है, अद्वैत तो वह अनादि सिद्ध है, उपनिषद सिद्धांत है, उनके पूर्वाचार्यों का सिद्धांत है। उस दर्शन का केवल शंकराचार्य जी ने पोषण किया है। उसको पुष्ट किया है। तो शंकराचार्य जी ने सबसे पहले अनेक उपनिषदों पर भाष्य लिखी। उससे पहले उपनिषद के ये मंत्र इतनी रहस्यमय थे कि साधारण व्यक्तियों को उपनिषद के मंत्रार्थ बोध होना बहुत मुश्किल होता था। उपनिषदों पर सबसे पहले भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखी। उसके बाद तो अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी भावना और अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग भाष्य लिखी, लेकिन पहले भाष्य रचना भाष्य लिखने वाले सर्वज्ञ आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। भाष्य ग्रंथ के अलावा अनेक प्रकरण ग्रंथ की रचना की स्वतंत्र, जिसके अंतर्गत उपदेश सहस्त्री है, जिसके अंतर्गत विवेक चूड़ामणि है, जिनके अंतर्गत सिद्धांत बिंदु आदि अनेक प्रकरण ग्रंथ हैं, प्रकरण द्वादशी प्रकरण अष्टक के नाम से प्रसिद्ध है, अपरोक्षानुभूति, दृक् दृश्य विवेक। प्रणव की व्याख्या में पंचीकरण, ये सब स्वतंत्र रूप में शंकराचार्य जी की रचना है। उसके अलावा स्वतंत्र रूप में स्तुति ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथों की रचना की है। कुछ लोग शंकराचार्य जी की प्रतिभा से असंतुष्ट हुए लोग ये आक्षेप लगाते हैं शंकराचार्य जी पर कि शंकराचार्य जी शुष्क अद्वैतवादी हैं। लेकिन शंकराचार्य जी को जो न समझने वाले हैं वही ऐसा आक्षेप लगाते हैं। सर्वज्ञ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी शुष्क अद्वैतवादी नहीं है। वास्तव में शुष्क अद्वैतवाद ही तो अष्टावक्र है, महर्षि अष्टावक्र है। अशुष्क अद्वैतवादी तो गौड़पादाचार्य जी हो सकते हैं, क्योंकि इन आचार्यों के कहीं भी भक्ति प्रकरण या भक्ति स्तोत्र आदि या भक्ति प्रसंग उपलब्ध नहीं होता है। उपासना से जुड़े हुए कई ग्रंथ, कोई प्रसंग समाज में उपलब्ध नहीं है। लेकिन खुद शंकराचार्य जी के अनेक ग्रंथ ऐसे हैं कि जो भक्ति से ओतप्रोत हैं, और वह भी कोई पूर्वाग्रही भक्ति नहीं है कि शिव भक्ति है तो केवल शिव भक्ति और किसी की नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय इतिहास में इस तरह समन्वयवादी आचार्यों का शंकराचार्य जी के अलावा और किसी भी आचार्यों में इस तरह का समन्वय देखने में नहीं आता है। और आचार्य केवल पूर्वाग्रही होकर समाज का नेतृत्व करते रहे। विष्णु भक्ति है तो केवल अंधा विष्णु भक्ति है, उन्होंने और किसी की चर्चा नहीं की। कृष्ण भक्ति है तो एक तरफ पूर्वाग्रह पूर्वक केवल कृष्ण भक्ति की चर्चा की, उसके अलावा और किसी की नहीं की। लेकिन सर्वज्ञ आदिगुरु शंकराचार्य जी की विशेषता है, वह जितनी निष्ठा अद्वैत वेदांत में है उतनी ही निष्ठा उपासना में भी रखते हैं, और साथ ही उपासना में जितनी निष्ठा शिव में रखते हैं उतनी निष्ठा शक्ति में भी रखते हैं, देवी में भी रखते हैं। तो इसीलिए शिव उपासना के लिए उन्होंने भक्ति के लिए स्वतंत्र रूप में शिवानंद लहरी नामक एक स्वतंत्र स्तुति ग्रंथ की रचना की। और जिसने शिवानंद लहरी की रचना की वही शक्ति की उपासना, देवी की उपासना के लिए सौंदर्य लहरी की रचना की। और उस सौंदर्य लहरी जब पढ़ते हैं तो सब कुछ परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही भगवती जगज्जननी पराम्बा शक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। उस समय ये नहीं सोचते हैं कि शिव का क्या होगा। और जब शिव की स्तुति करते हैं तो उस समय फिर शिव को ही परब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इस तरह शिव और शक्ति के रूप में दोनों की उपासना शंकराचार्य जी ने की। तो वैष्णव लोग ये कह सकते हैं कि शिव और शक्ति दोनों तो मिले हुए हैं, पति पत्नी हैं। तो शंकराचार्य जी ने शिव शक्ति की उपासना का प्रतिपादन किया, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने उसी तरह उसी निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की स्तुति की है। तब शंकराचार्य जी में आक्षेप करने का कोई अवसर ही नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। षटपदी आप पढ़िए, आज भी वैष्णवों में आदर्श स्तोत्र बना हुआ है षटपदी, शंकराचार्य जी की रचना है। इसी तरह अनेक स्तोत्र हैं कृष्ण भक्ति के लिए, भगवान शंकराचार्य जी का कृष्णाष्टक इतना प्रसिद्ध है, तो उपासना से संबंधित अनेक स्तोत्र ग्रंथ की रचना की है। उसी क्रम में भगवान शंकराचार्य जी ने ज्ञानमूर्ति, जो गुरुमूर्ति हैं भगवान शिव, उनकी भक्ति से संबंधित यानी गुरु भक्ति से संबंधित, हालांकि स्वयं शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य जी हैं, वो दीक्षा गुरु हैं, जिनसे शंकराचार्य जी ने संन्यास दीक्षा ग्रहण की। लेकिन साक्षात गुरु तो भगवान शिव ही है, क्योंकि शिव को सपूर्वे सामपि गुरु हो कालेन अनवच्छेदात, वह सभी पूर्वाचार्य जितने भी हैं उन सभी के भी वह परमाचार्य हैं। अब ये बात कुछ लोग नहीं मानते, जबकि ये स्वयं प्रमाण है, भागवत आदि व्यास के रचित पुराण आदि इसमें प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है इनमें, और वैष्णव आदि जिनको आचार्य मानते हैं उनके भी परमाचार्य भगवान शिव हैं। तो वो पूर्वाग्रही हैं, इसीलिए वहां तक पहुंचना नहीं चाहते हैं। सनत कुमार को पूर्वाचार्य के रूप में मानते हैं, लेकिन सनत कुमार के गुरु कौन है, ये तो उपनिषद और पुराण सब प्रमाण है, उन सनत कुमारों के भी आचार्य भगवान शिव है। सनत कुमारों के आचार्य उनको जो ज्ञान दिया वो पूर्वाचार्य भगवान शिव, उनको दक्षिणामूर्ति कहते हैं, और उन पूर्वाचार्य जो दक्षिणामूर्ति भगवान शिव हैं उन शिव से संबंधित स्तोत्र दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। भगवान शंकराचार्य जी ने भगवान शिव को गुरुमूर्ति के रूप में जो माना है तो वह ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, 10 श्लोकों का यह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, और इसमें इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में उन वेदांत के तमाम रहस्यों को समाहित करके, उन सूत्रों को इसमें समाहित करके, और भगवान शिव को गुरु को केवल नमस्कार द्वारा भक्ति की है। नमस्कारात्मक भक्ति, यहां भगवान दक्षिणामूर्ति को केवल नमस्कार किया है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये इदं नमः। क्योंकि जो ज्ञान देने वाला गुरु है उसको इस नमस्कार के अलावा और कोई भी और किसी भी वस्तु के द्वारा, अन्य किसी भी क्रिया के द्वारा उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। प्रसंग आएगा तो उसमें विचार करेंगे नमः शब्द का क्या अर्थ है, हमें याद आ गया, स्मृति में वो प्रसंग याद आ गया, बहुत वर्ष पहले इसी प्रेमपुरी आश्रम में हमारे गिरीश भाई के युवाओं का एक दिव्य पथ था, क्या था प्रसंग, उसमें मुझे बोलने का अवसर था। तो क्या बोले, बोले ओम नमः शिवाय में हमने तीन दिन प्रवचन किया था, ये पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय, उसमें इसके नमः के बारे में बहुत विस्तार से व्याख्या की थी। हरी भाई ड्रेस वाले भी थे उस समय, बहुत प्रसन्न हुए थे तीन दिन तक इस प्रसंग को सुनकर। तो नमः इस शब्द पर ये वो प्रसंग स्मरण में आ गया। तो नमः का अर्थ होता है जैसे आप कहते हो सर्वस्वात्म निवेदनम, तो बलि की जो भक्ति है वो आत्मसमर्पण है। और ज्ञान देने वाले गुरु को किसी वस्तु देकर पूर्ण नहीं हुआ जा सकता है। तब उस ज्ञान के द्वारा उपकृत जो हुए हैं उसका पूर्ण होने का एक ही प्रसंग है कि उसको नमस्कार करो, नमः। तो नमः एक शारीरिक क्रिया, आजकल तो नमः शब्द का, नमस्कार का अर्थ केवल एक शारीरिक क्रिया तक ही सीमित रह गया है, उसमें भावना को जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। कई बार जिससे हम बोलने भी नहीं चाहते, जिसको हम देखना नहीं चाहते, वो भी यदि अचानक सामने आ गया, सबके बीच में आ गया, तो सभी लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं तो अपने भी नमस्कार करना पड़ता है। यदि नहीं किए तो फिर और लोग बात करने लग जाएंगे, ये उसको तो नमस्कार है, हाथ भी नहीं जोड़ा इसने, भाई क्या बात है, उसके साथ झगड़ा है क्या, फिर और दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अंदर से भावना उसको नमस्कार करने की नहीं है, फिर भी बाहर से क्रियात्मक नमस्कार करना पड़ता है लोक उसके लिए, लोकोपचार के लिए, औपचारिक रूप में। लेकिन ये नमस्कार केवल क्रियात्मक नहीं है, नमस्कार वास्तव में भावनात्मक है। नमः शब्द का अर्थ ही होता है जिस अहम को तुम धारण कर रखे हो और जिस अहम के चलते तुम्हें कष्ट हो रही है, उस अहम का उत्सर्जन करना है। तो गुरु के सामने क्या अभिनिवेश रखना है, क्या अहंकार रखना है, जिसने जीव से शिव बना दिया है उसके सामने क्या घमंड करना है भाई। जो साक्षात जीव को शिव बनाने जा रहा है उसके सामने क्या अवशेष रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। तो नमः आत्म निवेदन है, ये प्रभु भाव है, समर्पण भाव है, उत्सर्जन है, समस्त माया और तत्कार्यों का उत्सर्जन है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने इस दक्षिणामूर्ति के स्तोत्रों के माध्यम से ज्ञान देने वाले वह परम गुरु जिसको यह दक्षिणामूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है, उन गुरु के प्रति जो आत्मनिवेदन है, भावनात्मक नमस्कार है, उसको इन स्तोत्र के माध्यम से प्रतिपादन करते हैं कि कैसा है वो आपका जो नमनीय है, आपका जो ज्ञानदाता गुरु है, वो वास्तव में कैसे हैं। तत्त्वतः उस तत्व का प्रतिपादन करके फिर ऐसे जो गुरु हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं।
1: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunilakanta Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारतीय संत या शिव भक्त नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम तिरुनीलकंठ है। प्राचीन काल में तिल्लई यानी कि चिदंबरम में एक कुम्हार परिवार रहता था। नटराज शिव की कृपा से उस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। विष को कंठ में धारण करने वाले शिव के तिरुनीलकंठ नाम को रटते रहने के कारण उस कुम्हार बालक का असली नाम लोग भूल गए और उनका नाम तिरुनीलकंठ से ही प्रसिद्ध हो गया। उनकी मान्यता यह थी कि शिव ने अपने कंठ में विष धारण करके मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि वे उनकी विघ्न बाधाओं को सदा दूर करेंगे। उनकी युवती पत्नी धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण और लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार तिरुनीलकंठ नगर में एक रात्रि व्यतीत करके प्रातः घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनके बाहर रहने का कारण जानना चाहा। यह ज्ञात होने पर कि पति एक वैश्या के साथ रात व्यतीत करके आए हैं, उनके विश्वास को ठेस लगी। उसने उसी क्षण कहा, तिरुनीलकंठ की शपथ, आप अब हमें स्पर्श नहीं करना। अपनी भूल और दुर्बलता पर पश्चाताप करते हुए तिरुनीलकंठ ने कहा, तुमने हमें शब्द का प्रयोग किया है, मैं आज से किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा। पवित्रता की प्रतिमूर्ति पत्नी गृहस्थ के सभी दायित्वों को निर्वाह करती रही। यद्यपि उस दिन से उनका शारीरिक संबंध समाप्त हो गया, परंतु किसी के कानों में यह खबर न हुई। इस घटना के अनेकानेक वर्ष बाद एक बार एक शिव भक्त अपना भिक्षा पात्र तिरुनीलकंठ के पास धरोहर के रूप में छोड़ गए। जब वे शिव योगी विविध तीर्थ स्थलों की यात्रा करके अपना भिक्षा पात्र लेने आए तो तिरुनीलकंठ उस पात्र को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। बदले में नवीन भिक्षा पात्र देने के आग्रह को अस्वीकार करने पर योगी ने तिरुनीलकंठ से यह कहा कि तुम चोर हो। उन पर चोरी का लांछन लगाया। मामला न्यायालय तक पहुंच गया। तिल्लई चिदंबरम निवासी ब्राह्मणों के न्यायालय में वृद्ध योगी ने कुशलतापूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायमंडल के धर्मस्थ सदस्यों ने तिरुनीलकंठ को बुलाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा। वादी के आरोपों को स्वीकार करते हुए तिरुनीलकंठ ने प्रतिवाद किया कि वे चोर नहीं है, परंतु भिक्षा पात्र कहीं खो गया है। न्यायाधीश ने निर्णय दिया, इन्होंने जो पात्र आपके पास थाती के रूप में रखा था वह आपसे गायब हो गया है। ऐसी स्थिति में यही उचित लगता है कि इन शिवयोगी की इच्छा के अनुसार आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस तालाब में डुबकी लगाएं और शपथ पूर्वक कहें कि आपने चोरी नहीं की है। वृद्ध तिरुनीलकंठ पत्नी के साथ साथ तालाब में उतरे। जल में डुबकी लगाने से पूर्व उन्होंने सारी सभा को पत्नी का हाथ न पकड़ने का मूल कारण रूप अपनी वैश्य गमन की घटना और पत्नी के शपथ वाक्य का प्रसंग सुनाकर स्पष्टीकरण किया। फिर एक बांस की छड़ी को पकड़े हुए वृद्ध दंपति ने जल में डुबकी लगाई। जल से बाहर निकले तब तक दोनों का कायाकल्प हो गया था। दोनों नवीन यौवन की दीप्ति के से दमक रहे थे। यह उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने ढूंढा तो वह वृद्ध शिवयोगी कहीं नजर नहीं आए। तभी उनको ज्ञात हुआ कि वे शिवयोगी नहीं बल्कि परंतु भगवान शिव स्वयं थे। तिरुनीलकंठ के समय में पुरुषों के वैश्याग्रह जाना एक साधारण सी घटना थी, पर तिरुनीलकंठ की पत्नी ने इसे अपने प्रेम और सेवा की अवहेलना समझा। तिरुनीलकंठ की शपथ लेकर कहा गया वाक्य वास्तव में पति के वैश्यगमन से हुए मानसिक आघात का द्योतक था। पत्नी की मर्यादा मानो खंडित हो गई हो। शिव द्वारा की गई इस लीला के मूल में तिरुनीलकंठ के पश्चाताप, त्याग भावना और पत्नी के प्रति किए गए अन्याय के लिए शारीरिक मानसिक दंड की स्वीकृति थी। अपने पश्चाताप द्वारा उन्होंने जो साधना की उसे समाज में उजागर कर यह कथा भक्त के आध्यात्मिक पुनर्जन्म को वर्णन करती है, इसीलिए उनका नाम नायनमार में गिना गया है। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय।
5: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
4: ओम नमः शिवाय।

प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दहिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विशेष संत प्रवचन माला कार्यक्रम का आज से आरंभ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। कभी प्रेमपुरी आश्रम आयोजित संत प्रवचन माला के अंतर्गत, कभी प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत। इस वर्ष गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी की रचना भगवान शिव के प्रति अपनी भावनात्मक भक्ति से ओतप्र होती यह शिवानंद लहरी, जैसे कि इसका नाम है शिवानंद लहर। आजकल चौमासा में समुद्र में लहर चल रहे हैं, तरंग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। विशेष करके आजकल के जो आधुनिक युवा युवती उस लहर का बड़ा आनंद ले रहे हैं। हम जैसे बूढ़े तो घबरा जाते हैं, पानी के छींटे से भी हमको खांसी जुकाम अनेक रोग आदि व्याधि आ जाते हैं, इसलिए हम बचना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं युवा युवती खूब आनंद लेते हैं उसका। हम वृद्धों के लिए प्रेमपुरी आश्रम में ये शिवानंद लहर है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सौ सौ श्लोकों का ये लहर, ये तरंग, इसका हम मुमुक्षु भगवान के भक्त भरपूर आनंद ले सकते हैं। और इसी उद्देश्य से इसका आरंभ किया गया है। भक्ति में भाव प्रदान होता है, भक्ति में तर्क और बुद्धि का बहुत कम योग उपयोग होता है, भक्ति में भावना से संबंध है, भाव प्रदान है। इसलिए किसी संत ने कहा प्रार्थना भले ही शब्द शून्य हो लेकिन भाव शून्य नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना में शब्दों का महत्व बहुत कम है, लेकिन कई बार हम शब्दों का प्रयोग करते हुए भाव से रहित हो जाते हैं, केवल शब्दों के चक्कर में पड़ते रहते हैं। शब्दों के साथ भावना यदि जुड़ी हुई हो तो प्रार्थना सही होता है। तो मुझे लगता है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस शिवानंद लहरी में शब्दों का प्रयोग तो किया ही है, लेकिन इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी भावना किस तरह प्रस्तुत किया है, ये बात शिवानंद लहरी के प्रसंग से हमें जानने को मिलता है। जैसे कि शिवानंद लहरी में 100 श्लोक हैं, कुछ कुछ श्लोक शिवानंद लहरी के इतने महत्वपूर्ण हैं, वह हमारे हृदय को छू जाते हैं,
विगत 3 साल तक हमने इसकी व्याख्या लगातार करते आ रहे हैं और हमारा लक्ष्य रहेगा कि इस साल इसको पूरा करेंगे। गत वर्ष हम अंतिम प्रवचन के लिए हमने 66वां श्लोक का प्रयोग किया था। नियमानुसार इस साल हम 67वां श्लोक से आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले 66वें श्लोक का वो निरंतरता बनी रहे, आपको स्मरण में आ जाए तो 66 श्लोक का भाव क्या है और उस भाव से 67वें श्लोक का संबंध क्या है, इसके लिए हम पहले अभ्यास कराएंगे आपको। शंकराचार्य जी ने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है इस स्तोत्र की रचना में। ये 67वां श्लोक आर्य छंद का प्रयोग किया। बहुविध परितोष बाष्प पूर स्फुर पुलकांकित चारु भोग भूमि चिरपदकांक्षी सेव्यमानां परम सदाशिव भावनां प्रपद्ये। इसको अलग अलग पद का प्रयोग करके इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। दूसरा श्लोक है 68वां। अमितमुदमृतम मुहुर्दुहंतिम विमल भवत्पद गोष्ठमा वसंतिम सदय पशुपते सुपुण्य पाकाम मम परिपालय भक्ति धेनु मेकाम जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या वरिवसितुं सुलभ प्रसन्न मूर्तिः अगणित फलदायक प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राससे करोस्ति। इन श्लोकों में शंकराचार्य जी ने श्लोकों के द्वारा शंकराचार्य जी ने जो भाव व्यक्त किया है उसकी व्याख्या करते हैं। पिछले साल का अंतिम श्लोक 66वां श्लोक, हालांकि गत वर्ष हमने इस पर बहुत व्याख्या की, 1.5 घंटे तक इस श्लोक की व्याख्या की थी। क्रीडार्थम सृजसि प्रपंचमखिलम् क्रीडा मृगस्ते जन यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मत्स्यष्टितं निश्चितं तस्मान् मामकरक्षणं पशुपति कर्तव्यमेव त्वया। परमात्मा अलौकिक पुरुष है, इसके बावजूद भी शंकराचार्य जी जब उनकी स्तुति करते हैं तो मानो कि वो एक लौकिक पुरुष है।
लोक व्यवहार में व्यक्ति आनंद के लिए बहुत कुछ करता है। हालांकि तमाम श्रुतियों ने परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा है। भगवान शिव स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद जिसका स्वरूप हो उसे आनंदित होने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ गए? मिश्री स्वयं मधुर स्वरूप है, मीठा है, मधुर है। मिश्री को मीठा होने के लिए किसी अन्य का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जलेबी स्वयं मधुर स्वरूप नहीं है उसके। पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने इसका संकेत किया। जलेबी जब बनाया जाता है, मैदे को भिजाते हैं, एक दो दिन पहले उसको खमीर बनाते हैं, फिर उसको तेल में पकाते हैं, लेकिन मधुर नहीं होता है, मीठा नहीं होता है। तेल में पका हुआ जलेबी मीठा नहीं होता है। और जलेबी को मीठा करने के लिए मिश्री का यानी चीनी का आश्रय लेना पड़ता है। बेसन का जब पकौड़ा आप पकाते हो तो वह नमकीन नहीं होता है। वो पकौड़े को नमकीन होने के लिए नमक का आश्रय लेना पड़ता है। जलेबी को मधुर होने के लिए चीनी का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन नमक को नमकीन होने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ेगा? किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, खुद नमकीन है। चीनी को मधुर होने के लिए किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, चीनी खुद। तुम हम लौकिक पुरुषों को आनंदित होने के लिए अन्य का आश्रय लेना जरूरी है, क्योंकि हम लौकिक पुरुष में वह आनंद स्वरूपता अनुभव में नहीं आ रहा है। हालांकि वेदांत की प्रक्रिया से वह हमारा स्वरूप है, अपना ही स्वरूप होते हुए भी प्रातःकालीन प्रवचन पंचदशी के प्रवचन में आप लोगों ने सुना, प्रतिबंधक के चलते उसका अनुभव नहीं हो पाता। जब तक वो प्रतिबंधक नहीं हटेगा तब तक उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अन्य का आश्रय लेना पड़ता है। तो हजार विकल्प हम लोगों ने खोज ली है। लौकिक पुरुष आनंदित होने के लिए अन्य का आश्रय लेते हैं और उसके लिए अन्य के रूप में हजार विकल्प खोजी। भगवान शिव को कोई विकल्प खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन मानो कि वो हमसे मिल रहे हैं, वो अलौकिक पुरुष होते हुए भी मानो कि वह हमारी तरह लौकिक पुरुष की तरह वह व्यवहार कर रहे हैं। तो जिस तरह लौकिक पुरुष आनंदित होने के लिए